0: mobile app.
1: Metro Plus.
0: Metro Plus, your connect.
1: Your connect.
2: Don't let dental problems worsen. The government has launched the Community Dental Support Programme for underprivileged groups with financial need. The programme includes scaling, filling or extraction, root canal treatment and removable dentures. Clinics are available in all 18 districts. Approach the clinic directly or ask a social worker for help. Oral issues, early identification, timely intervention. Book your appointment now.
3: It's my life.
0: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
4: Life is for the living. You have to make the most of it.
0: On Family.
4: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
0: Life with drugs. No life at all.
5: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
6: Namaste, Sasrikaal, Salaam, kitna ho ji sare vadhiya, aapa ji bahut vadhiya. Aaj hai ji 15 May 2026. Shuru karte hain hamara show. Aaj hamare paas hain takriban 1 2 3 4 5 6 6 announcements. We've got 6 announcements today. तो फटाफट मैं आप सब ये अनाउंसमेंट सुना दूं और साथ में आपके गाने भी गा दूं. One thing before we move on with the show, requests Facebook पर बहुत आ रही हैं. We're getting a lot of requests on Facebook, which is good. Keep them coming, keep supporting us, Desi Tadka on Facebook. और ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि भाई हर किसी के रिक्वेस्ट हम प्ले नहीं कर सकते. एक घंटे में हमें जितना टाइम मिलता है, जितने गाने लगा सकते हैं हम उतने गाने लगाएंगे. तो अगर आपके गाने नहीं लग रहे हैं, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत करना. कोशिश करूंगा कि मैं अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते आपके गाने लगा दूं, ठीक है? क्योंकि हमें अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पर. वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू अराउंड 100 मैसेजेस एवरी वीक. तो अभी इतने सारे रिक्वेस्ट एक घंटे पे humanly impossible, ठीक है? Humanly impossible to play like hundreds of songs in 1 hour. तो शुरू करते हैं जी हमारा show with our first announcement. This is receive colorectal cancer screening. आज ही colorectal cancer screening program में शामिल हो जाइए. हांगकांग में colorectal cancer अंतर और rectum का cancer बहुत कॉमन कैंसर्स में से एक है. अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हो तो इसको जल्दी पकड़ सकते हो और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाओ. शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के कोई लक्षण भी नहीं दिखते, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. ये प्रोग्राम हांगकांग के 50 से 75 साल के रेसिडेंट्स के लिए है जो अभी कोई सिम्टम्स नहीं फील कर रहे. स्क्रीनिंग फ्री भी हो सकती है. अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आए तो हर 2 साल में एक बार स्क्रीनिंग जरूरी करवाएं, जरूर करवाएं. ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाइए colonscreen.gov.hk. हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करो, दो सर्विंग फ्रूट और 3 सर्विंग सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो. आज ही स्क्रीनिंग के बारे में जान लो. ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला अनाउंसमेंट. एंड आवर फर्स्ट सॉन्ग इज बाय एन एनोनिमस पर्सन और उन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो है असीसा बाय अमर सैबी. सो एंजॉय द सॉन्ग.

All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर. ये है जी हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैरियर एक्सपो 2026 टू बी हेल्ड ऑन 22nd टू 24th ऑफ मई. लेबर डिपार्टमेंट और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलकर बड़ा कैरियर एक्सपो कर रहे हैं, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपो एंड कैरियर फेयर 2026. तारीख है 23 और 24 मई 2026. जगह है टर्मिनल 2 अराइवल्स लेवल L5 अराइवल्स हॉल हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एविएशन इंडस्ट्री के लगभग 40 ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए अलग अलग तरह के जॉब्स लेके आ रहे हैं. पढ़ाई का लेवल चाहे जो भी हो, आपके लिए सुटेबल पोजिशंस मिल सकती हैं. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और एविएशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस करियर एक्सपो में ज़रूर आइए. इवेंट की पूरी डिटेल्स और ओपनिंग आवर्स के लिए वेबसाइट चेक कीजिए www.jobs.gov.hk. मौका हाथ से मत जाने दो. ओके, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. ये मनी की सिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है मनी के लिए. गाने का नाम है जी वीरे बाय चंद्र बरार. सो एंजॉय द सॉन्ग.

0: ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ
1: ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
0: ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ
2: Alright guys, welcome back. Aate hain ji hamare agle announcement par. This is job fair to be held on 19th May 2026. Is job fair mein teen companies lagbhag 160 alag alag jobs offer kar rahi hain. Positions hain jaise aviation security officer, surveillance assistant, team member, full time or part time, track fitter, electrical fitter, day or night shift, technician, carpenter, linesman, medium vehicle driver, motorman, motorwoman or plumber vagera. Zyadatar jobs mein Chinese language ki zarurat bahut kam hai. Employers wahi par on the spot interview karenge. Free interpretation service bhi available hai. Interested ho to pehle se reservation kar lo. Call kijiye 2568-4752. Zyada details ke liye आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.jobs.gov.hk. जरूर आइए और अपनी जॉब फिक्स करो. ऑलराइट, पढ़ते हैं जी हमारे रिक्वेस्टेड सॉन्ग पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय अमन चोपड़ा. गाने का नाम है जी मित्रा दे डेरे बाय हस्तिंदर सिंह एंड डेडिकेटेड टू बच्ची लाइची कॉक. एंजॉय द सॉन्ग.

All right, guys, welcome back. आते हैं अगले अनाउंसमेंट पर. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. इस सीजन में अलर्ट रहो इन्फ्लुएंजा, फ्लू, COVID-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं. अभी अपनी पर्सनल हाइजीन और घर परिवार की सफाई का ख्याल रखो. खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक को ढक लो. हाथ और लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धोयो धो लो. और अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से सलाह लो. गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर. जो लोग एलिजिबल हैं उनको फ्री या सब्सिडाइज फ्लू शॉट मिल सकता है. कोविड-19 अभी

0: कम है, लेकिन हाई रिस्क वाले लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल केयर होम्स में रहने वाले, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग जो 6 महीने से ऊपर हैं, और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर जाइए, www.chp.gov.hk, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऑलराइट, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय श्रेय खान एंड मलिक। इन दोनों ने रिक्वेस्ट किया है सेम गाना, बट फॉर डेडिकेटेड टू डिफरेंट पीपल। तो पहला शेर खान, जिन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है डेविल, और जो आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला, रिक्वेस्टेड फॉर दिलराज फ्रॉम पिक्योक, ठीक है। और दूसरा है जी मलिक बाबर, इन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है अगेन, सॉन्ग नेम वही डेविल बाय सिद्धू मूसेवाला। डेडिकेटेड टू कुछ लिखा नहीं है, बट एनीवेज आप ये गाना एंजॉय कीजिए। दिस इज डेविल बाय सिद्धू मूसेवाला। Enjoy the song.
1: Big building, big building.

0: ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। आते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। ओके, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज की हर साल रिव्यू हो चुकी है। अब 1 मई 2026 से मिनिमम वेज बढ़कर $43.10 पर आवर हो गई है। जो भी इम्प्लॉयज मिनिमम वेज ऑर्डिनेंस के अंडर आते हैं उनको ये मिनिमम वेज मिलना चाहिए, चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो या किसी भी तरह का जॉब हो। डिसेबल्ड इम्प्लॉयज अगर चाहें तो प्रोडक्टिविटी टेस्ट दे सकते हैं और उसके हिसाब से सैलरी मिल सकती है। नोट कीजिए कि ये मिनिमम वेज लिव इन डोमेस्टिक वर्कर्स, लोकल या फॉरन पर नहीं लागू है, स्टूडेंट, इंटर्न्स और वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स पर भी नहीं लागू है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 2717-1771। पढ़ते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय अमृतपाल, डेडिकेटेड टू जेट विस्की जितेंद्र, एंड गाने का नाम है बंदा बम्ब। जॉर्डन संधू का ये गाना है। वन मैसेज फॉर हिम, मिस यू ब्रदर, कम बैक सून चाचू। सो एंजॉय द सॉन्ग। दिस इज बंदा बम्ब बाय जॉर्डन संधू।
1: ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. दिस इज अपील फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन. अपने कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते आपको अपना सिविक राइट यूज़ करना चाहिए वोटर बनने के लिए. अभी रजिस्टर कीजिए.

अगर आपकी उम्र 25 सितंबर तक 18 साल या उससे ज़्यादा है और आप हांगकांग के परमानेंट रेजिडेंट हैं और यहाँ रेगुलरली रहते हैं तो आप इलेक्टर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप 2 जून तक अपना एप्लीकेशन इजीली आई एम स्मार्ट ऐप से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरकर ईमेल, पोस्ट या फैक्स से भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। फॉर्म आई एम स्मार्ट आप में ऐप में vr.gov.hk वेबसाइट पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस में, पब्लिक हाउसिंग एस्टेट्स के मैनेजमेंट ऑफिसेस में और रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस में मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड वोटर हैं तो अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आई एम स्मार्ट ऐप या vr.gov.hk वेबसाइट से। अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं से अपडेट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए vr.gov.hk वेबसाइट पर जाइए या रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस के हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2891-1001। आप अपने लोकल सपोर्ट सर्विस सेंटर्स में भी जा सकते हैं। अभी एक्शन लीजिए, अपने कम्युनिटी के इलेक्टर बने। ओके, इसी के साथ हो गए जी हमारे सारे अनाउंसमेंट खत्म। अब ये जो गाना लगने वाला है, हार्वी सिंह ने रिक्वेस्ट किया है। गाने का नाम है हेयर एंड देयर बाय करण औजला, रिक्वेस्टेड फॉर अंकित हरियाणा, मुन्ना, सोनू, जिमी, सनी, गैरी एंड नीतू। सो एंजॉय द सॉन्ग।

All right, guys, welcome back. आते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज बाय बिलाल खान और गाने का नाम है जी शम्मत बाय गुलाब सिद्धू. दिस इज डेडिकेटेड टू सिकंदर जॉर्डन, नोमी ताइलो, अमरीका बाई. एंजॉय द सॉन्ग.

All right, guys, welcome back to the show. आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय खान भाई एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज AK-47. निंजा का ये गाना है एंड डेडिकेटेड टू चाचा अमरीका AK. All right, एंजॉय द सॉन्ग. दिस इज AK-47 बाय निंजा.

0: ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर मी टुनाइट। मैं लेता हूँ जी आप सबसे अलविदा। जाने से पहले मैं एक दो गाने और लगा दूंगा। अगेन, जैसे कि मैंने शो के शुरुआत में कहा है कि हमें हर हफ्ते तकरीबन 100 रिक्वेस्ट आती है और एक ही घंटे में हमारे पास आई थिंक 12-13 गाने ही लग सकते हैं, 100 गाने नहीं लग सकते। सो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि मैं हर किसी हर बंदे के हर रिक्वेस्ट प्ले कर सकूँ, वो भी एक घंटे में। ह्यूमनली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आई गेस आई विल टॉक टू यू गाइस अगेन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए चिल करो, टेंशन ना लो, चढ़ती कलाते रहो। जाने से पहले मैं एक गाना प्ले कर दूंगा। ये सनी सिंह ने गाना रिक्वेस्ट किया था। गाने का नाम है मोफियोसो बाय रियल बॉस एंड आई डोंट सी एनीवन दैट इज डेडिकेटेड टू। तो एनीवेज, एंजॉय द सॉन्ग। अगेन फिर से, अगर आपका रिक्वेस्ट आज मिस हो गया है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्ले इट नेक्स्ट वीक। अगेन सबको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास लाइक लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं और ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि हर किसी के गाने हम एक घंटे में प्ले कर सकें। आज के शो में ही, अभी जो एक घंटे का जो शो है, ऑलरेडी मेरे को 20 न्यू मैसेजेस आ गए हैं फॉर न्यू रिक्वेस्ट। तो अभी ये मैं कैसे लगाऊंगा मुझे नहीं मालूम। एनी वेज, दैट्स इट फॉर टुनाइट। I'll see you guys next week, same time, same place. तब तक के लिए चिल करो, टेंशन ना लो, ते चढ़ती कलाते रहो। रब रखा, गुड नाइट एंड गुड बाय।
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest, and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
2: Hey, yeah.